राय उलू बुगाओ बीत बा नताए आदियन हिताए गा समानिंगा रिता के किताए रमा यमाया मंजुआं उता